0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।

0: This is Leica Radio.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963 5757.

0: जिंदगी।
1: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी जहां है खाखरा नमकीन भाखरी चिक्की सोन पापड़ी पिकल्स और बहुत कुछ
3: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन
4: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
5: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: ये है लाइका रेडियो। लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
1: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
1: Also explore 2026 cruises.
2: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester. Or call Citybond Travel on 01162-167-225. We're at all protected.
3: Maharaja Tours ke saath Nepal aur Bhutan ki adhyatmik yatra par chaliye. Apna sukoon dhundiye. Himalay ki khoobsurat wadiyon, prachin monasteries, rang-birangi sanskriti aur yaadgar अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।

0: ¡Vamos a esa hoshiar!
1: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: विशेष दिन है आज भाई, 27 अगस्त 2026। आपको बता दें जो लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि भाई राखी कब है, तो यहाँ यूके में और यूरोप में राखी आज है, रक्षाबंधन का पावन त्योहार। और इसका सबूत है ये बूंदाबांदी, ये बारिश, ये बादल सावन का प्रतीक होते हैं ये। और भाई रक्षाबंधन कई जगह कल भी है, भारत में कल मना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब तिथि शुरू होती है उससे हमारी तिथि जो है सुबह प्रातःकाल से उसी से उस दिन का संबंध जुड़ता है। फिर भाई वो चंद्र ग्रहण भी थोड़ा रुकावट बन रहा था त्योहार के मनाने में, और वो रात को लेट, जो यहाँ के समय के अनुसार तो वो कल के राखी के त्योहार को प्रभावित कर रहा था। आज राखी का दिन है, एक दो गीत जरूर सुनवाएंगे, रक्षाबंधन के महत्व को बताएंगे। आज स्वर्गीय मुकेश जी की पुण्यतिथि भी है, जिक्र करना पड़ेगा भाई। बहुत बहुत गंभीर गहन समुद्र सी गहराई लिए वो आवाज, वो अंदाज कैसे भुला सकते हैं हम, याद करेंगे स्वर्गीय मुकेश जी को। इसके अलावा भाई क्रिकेट का मैच चल रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच स्कोर देखेंगे। और आज से शुरू हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच अगला टेस्ट मैच, अभी एक घंटे से भी कम समय में मैच शुरू होगा और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे। सेकंड टेस्ट लॉर्ड के मैदान में खेला जाएगा, लॉर्ड्स में। लेकिन भाई यहां शुरुआत गीतों से, बातों से, और आज बृहस्पतिवार है, थोड़े गंभीर गीत हो। वेरी गुड मॉर्निंग।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio Network, broadcasting across the Midlands.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में गीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं भाई इस मोड पर. आपको पाउंड का रेट बताएं, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले, नोट कीजिए. और राखी के त्योहार पर अगर आप भारत भिजवाना चाहते हैं पैसे तो कहते हैं सही अवसर है. तो SBI UK टुडे गिविंग 129.4 रुपीज फॉर वन पाउंड. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: और भैया दिला दें आपको कि 10:30 के आसपास आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार. और समाचारों में एक डिस्टर्ब करने वाली खबर ये है कि बहुत भयंकर तबाही मची है नेपाल में. वहाँ आई बाढ़, वहाँ भाई जो भूस्खलन हुआ है और पानी का सैलाब इस तरह से शहरों को लील गया है, उखाड़ गया है, पेड़ों को और भाई बिल्डिंगों को बहा ले गया है, गाड़ियाँ तैरती नजर आ रही हैं, इतना विनाश हुआ है और लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं. कई लोग यूके से, भारत से, काफ़ी लोग जो वहाँ किसी कार्यवश या दौरे पर या सैलानी के रूप में गए हुए थे और जिनका पता नहीं लग रहा, उनके परिवार वाले बड़े चिंतित हैं. अब एक सवाल उठ रहा है कि इतनी भयंकर तबाही का मौसम वाले पहले से अनुमान क्यों नहीं लगा सके या पहले से सूचित क्यों नहीं किया गया. नेपाल और चाइना के बीच हालांकि इस तरह की व्यवस्था है, पर अब ये कह रहे हैं कि चीन ने समय पर अलर्ट नहीं भेजा, वरना इतनी जो मौतें हुई हैं, इतना जो विनाश हुआ है, उसमें कुछ बचाव किया जा सकता था. समय पर अलर्ट ना भेजने के इल्जाम पर चीन ने जवाब दिया है. क्या जवाब दिया है हम समाचारों में इंक्लूड करेंगे. फिलहाल कुछ एक संदेश और उसके बाद बता दूं आपको, 10:30 आप हिंदी में खबरें सुनेंगे और हर घंटे हमारे यहां से अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाते हैं. दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क का लाइका गोल्ड रेडियो एंड Like a radio Midlands. My name is Ravi Sharma and I'm with you till 1 o'clock this afternoon.
2: Ye hai
3: Like a radio.
4: Apno ko apno ke kareeb
5: aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold aur Utsav Bharat hai Star Bharat.
6: Kuch shaam ek calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jati hai. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. सैटरडे द 5th of September एट द प्लैटिनम स्वीट लेस्टर. अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मिस्टर बी ऑन 07860280655. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: This December, thand ko bolo goodbye.
0: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: In 5 days, Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

0: ना उत्सव प्लस, अब है स्टॉप प्लस।
1: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जाने क्या।
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
3: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बात।
1: स्वर्ग मुकेश की आवाज में सुना आपने ये गीत और सुनवा रहे थे।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Leica Radio. Win with Jamin Foods.
1: और भाई एक सूचना आपके साथ साझा करने के लिए पहुंची है मेरे स्क्रीन पर। लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन बाय गिविंग अवे अ बॉक्स ऑफ जेमिन फूड ट्रीट्स। जेमिन इज रिनाउंड फॉर माउथ वाटरिंग रेंज ऑफ नमकीन, पिकल्स, मुखवास एंड पापड़, प्लस एक्साइटिंग रेडी मील लाइक खिचड़ी, पोहा, शीरा, पाव भाजी एंड वेज बिरयानी। भाई बहुत कुछ स्वादिष्ट व्यंजन जो है उनके बड़े लोकप्रिय हैं। रेडी इन जस्ट 5 मिनट्स बाय एडिंग हॉट वाटर। jaminsnacks.com पर आप पूरी जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। लिसन दिस रक्षाबंधन फ्राइडे 28th ऑफ अगस्त विच इज टुमारो फॉर यू टू विन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: बस एक दिन और, कल है रक्षाबंधन, तो तैयार हो जाइए राखी का त्योहार मनाने जेमिन फूड्स के साथ। रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। प्रमुख समाचार में, भाई ब्रिटिश मैन फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव अ ब्रेन ट्यूमर रिमूव्ड विद हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस व्यक्ति का ब्रेन ट्यूमर रिमूव किया गया है, इलाज हुआ है, भाई पहला व्यक्ति है वो एक ब्रिटिश मैन, ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। इसके अलावा भाई जो आज मेन खबर छाई हुई है हर जगह, वो तो नेपाल के उस भीषण तूफान की है, वो उस बाढ़ की है जिसमें कितने ही लोगों की भाई जान जा चुकी है और काफी लोग लापता हैं। आइए देखते हैं क्या ताजे समाचार है वहां से। रेड क्रॉस ने कहा है कि बाढ़ के बाद नेपाल में हालत बहुत गंभीर है, लोगों को मदद की जरूरत है। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कम से कम 177 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 800 से ज्यादा लोग लापता है। नेपाल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके चीफ डेविड फिशर ने कहा है कि बुधवार को आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में अभी भी बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि नेपाल के उत्तरी हिस्से के कुछ इलाकों में सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बाढ़ ने पुलों और सड़कों को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम वहां कुछ साउथ में जमीन पर मौजूद है और वो लोकल वॉलंटियर से संपर्क करने के लिए वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई है। नेपाल पर बाढ़ के ऊपर धर्मगुरु दलाई लामा ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रसवा क्षेत्र और तिब्बत के गिरोंग में बाढ़ से हुई जनहानि और भारी नुकसान पर उन्हें बेहद दुख हुआ है, वो अपनी

कटरी इलाके में नाथापुरवा गांव के पास हादसे का शिकार हो गया। तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में बाढ़ और भूस्खलन से के बाद लापता लोगों की तादाद बढ़कर 560 हो गई है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने आज सुबह सुबह ये जानकारी दी है। मतलब नेपाल में ही नहीं, नेपाल के आसपास भी इस भयानक बाढ़ का भाई असर महसूस किया जा रहा है। लापता लोगों में 260 फॉरेन सिटीजन शामिल हैं। हादसे में अब तक वहां 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। नेपाल में जो लोग लापता हैं उनकी संख्या करीब 900 हो गई है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद इतने लोगों की लापता होने की पुष्टि है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिएक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जानकारी साझा की है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने दूसरी राहत फ्लाइट रवाना कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत नेपाल में राहत कार्यों के लिए हर पॉसिबल हेल्प करता रहेगा। एस जयशंकर ने आज एक्स पर लिखा कि दूसरी फ्लाइट रवाना हो चुकी है, जिसमें नेपाल के लिए 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां, खाने के पैकेट, इस तरह का सामान भेजा गया है। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्होंने कहा कि हम लगातार मदद करते रहेंगे। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। हादसे में वहां काफी लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन काफी लोग लापता हैं, जिससे मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका बनी हुई है। बताया जा रहा है कि भारत के भी करीब 300 लोग लापता हैं। इसके अलावा अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34 और ब्रिटेन के 33 नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार नेपाल में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगी। नेपाल में बाढ़ से 130 से अधिक भारतीय लापता हैं। अब तक इनके बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों के यात्री जो है नेपाल में फंसे हुए हैं और उन सब के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। अमेरिका से खबर आई है कि बच्चों में सोशल मीडिया की आदत यानी लत डालने के कारण मेटा को 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा, भुगतान करना होगा। मेटा ने बच्चों में सोशल मीडिया की लत और मानसिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के इल्जामों से जुड़े मुकदमों को निपटाने के लिए अमेरिकी स्टेट्स को कुल 18 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जता दी है, मान लिया है। मेटा ने कल कहा कि समझौते के तहत तय राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में सालाना किस्तों के रूप में किया जाएगा। एक खबर मेरे राज्य हरियाणा से आई है, लेकिन घटना या दुर्घटना यूपी में घटी है। यूपी में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कल शाम यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या हुई है। उनका कत्ल किया गया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने जिम से बाहर निकलते समय अंकित बालियान पर कई राउंड फायरिंग की। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शामली के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और घटनास्थल के आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हुई जनहानि पर दुख जाहिर किया है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की सरकार और जनता के साथ खड़ा है। शरीफ का बयान है कि नेपाल के रसुआ जिले और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित दूसरे इलाकों में कीमती जानों के जाने और बड़े पैमाने पर हुई तबाही से मुझे दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए भारत अब तक 10 टन से भी ज्यादा मानवीय हेल्प भेज चुका है। वहां बताया गया है कि भारत की ओर से भेजी गई ये सहायता नेपाल को सौंप दी गई है, वहां पहुंच चुकी है। और एक खबर आरएसएस के बारे में, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग
कमीशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के अमेरिका

0: दौरे को लेकर के चिंता जताई है। कमीशन ने बुधवार को अमेरिकी सरकार से भागवत का वीजा रद्द करने और उन्हें भविष्य में अमेरिका में एंट्री के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। ऐसी मांग मोदी जी के बारे में भी हुआ करती थी, बाद में उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था। लेकिन USCIRF ने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि RSS से जुड़े संगठनों ने भारत में ईसाइयों, दलित और मुसलमानों और सिखों समेत कई माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसक हमले किए हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार से RSS के सदस्यों के इस RSS के सदस्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में कथित तौर पर शामिल भारतीय अधिकारों पर टारगेट सैंक्शन लगाने की मांग की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे भाई, बड़े क्या कहे सेंसिटिव समाचारों के प्रसारण के बाद ये छेड़खानी वाला गीत आज कम से कम पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आप ये गीत सुनिए।

0: Mangal Singh aur Sachu ki awaaz mein aap sun rahe the ye guitar that was taken from the film कर्मों की सजा। चरणजीत आहूजा का संगीत था और भाई हमारे अपने गायक कलाकार मंगल सिंह की सदाबहार आवाज।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: लाइका रेडियो हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: साउथ होल ट्रेवल का संदेश। साउथ होल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटेटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टेक्ट साउथ होल ट्रेवल टुडे ऑन 0208574 8410। साउथ होल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: हॉलीडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ होल ट्रेवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस। विजिट southholetravel.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रेवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
8: T's and C's apply.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-6333 or visit mantraholidays.co.uk.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Little Garba Stars, तैयार थे जाओ। KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with live from India. Saturday 17th October, बपोरे 1 थी 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 थी 10 वर्ष ना kids माटे entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Laika Radio.
13: It's back and it's bigger.
14: Laika Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
13: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
14: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
13: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
15: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
16: Hey, boy!
17: Coast Guard, we're stuck.
18: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
17: Shoes tied. Phone.
18: Back before dark, love. Okay.
19: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
2: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
20: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and leicagold.com.
21: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: Biker Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और लेमफाई के रेट्स बता देता हूँ आपको भाई, एक पाउंड के बदले इंडियन रुपीस वो दे रहे हैं 129.74, पाकिस्तानी 377.09, श्रीलंकन 446.31 और बांग्लादेशी टके
0: 167.05. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKER Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is trading at the rate of 108.5 pounds per
0: gram. Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-426.
4: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold. Aur Utsav Bharat hai Star Bharat.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर 20 kg, sir, 10.99.
6: Falcon Cash and Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A, Rollout Cell, Leicester, LE5-4UN.
0: One performer.
5: Countless personalities. A
0: whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ a lifetime. Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
14: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
15: ये है लाइका गोल्ड

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क का ये लाइका गोल्ड रेडियो है और लाइका रेडियो मिडलैंड। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, कार्यक्रम के इस मोड पर मैं आपको सुनाता हूँ थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

0: भाई मैंने हेडफोन भी बदल लिए हैं, उनको अलग अलग तरह से सेट करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी ये सीटी मारने से नहीं चूकता है। कुछ इलाज इसका करना पड़ेगा। खैर लौट आइए चिंतन की तरफ, थॉट फॉर द डे। आज के चिंतन के लिए हमें बहुत सारे लोगों के संदेश मिले हैं, और उनमें भाई एक तो मैसेज आया है ओगरा परिवार का। शिप्रा ओगरा लिखती है कि मैं चिंतन भेज रही हूं, लेकिन मेरी माँ को आज आप संदेश दीजिएगा। उनका नाम रत्ना ओगरा है, वो गुड़गांव में रहती हैं। मेरे पिताजी का नाम सोहन ओगरा है और उनकी शादी को 53 साल हो गए हैं, और मम्मी का आज बर्थडे है, वो 80 बरस की हो जाएंगी। मेरा नाम शिप्रा ओगरा है, मेरी दोनों बहनें श्रुति ओगरा और सुरभि ओगरा उनके साथ उनका जन्मदिन मनाएंगी, और मैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम में हूँ, तो मुझे वहाँ ना पहुँच पाने का दुख तो है, पर उम्मीद है जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। थैंक यू शिप्रा जी, आपका मैसेज इंक्लूड हो गया। चिंतन के संदर्भ में भाई हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुकेश जी का, और भाई उन्होंने भी योगदान दिया है, और चिंतन में शामिल है योगदान हमारी वत्सला जी का। इसके अलावा भाई एक और हमारी लिसनर, रेगुलर लिसनर संदेश भेज रही हैं, दामिनी। दामिनी कहती हैं कि कैन यू प्ले ए रक्षाबंधन सॉन्ग फॉर माय सिबलिंग्स इन इंडिया, एंड कैन यू रिकॉर्ड एंड सेंड टू मी। भाई ये रिकॉर्ड करने वाला आप खुद कीजिए, थोड़ा बहुत काम तो खुद भी कीजिए, सब कुछ रवि शर्मा से चाहते हैं। दामिनी जी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ फैसिलिटी नहीं है ये कहिए, तो स्टूडियो से बाहर बैठ के तो हम कर सकते हैं, अपना ही कार्यक्रम नहीं रिकॉर्ड करते, आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और भाई आज के चिंतन के लिए बहुत सारे लोगों के क्या कहें संदेश हैं, तो आप सब की ओर से प्रस्तुत है थॉट फॉर द डे आज का चिंतन।
1: चिंतन चिंतन
0: रक्षाबंधन का त्योहार है आज। आप कहेंगे भाई कल भी तो है, लेकिन आपको बता दें कि काल गणना कुछ इस तरह से की जाती है, और हमारे यहाँ तिथियां जो हैं वो जो सुबह होती है ना मॉर्निंग में, तो वो तिथि मानी जाती है, और उसका और भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे चंद्र ग्रहण अगर कल पड़ रहा है आधी रात के बाद आज से, तो वो प्रभावित करता है, तो आज ही रक्षाबंधन जो है यहाँ यूके में और यूरोप में मनाए जाने की जो हमें सूचना मिली है मंदिरों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा। खैर साहब आप आज मनाएं कल मनाएं, क्योंकि आप अगर अपने भाइयों को राखी हिंदुस्तान में भिजवा रही हैं तो वो कल भी बांध सकते हैं, वहां कल मनाया जा रहा है। पर राखी बांधने का एक मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिवग्नामि रक्षे माचल माचल। बड़ा अच्छा ये मंत्र है भाई, कई लोग ब्राह्मणों से बंधवाते हैं, कई लोग जो है बहन से अगर पास में है तो बंधवाते हैं, और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बोल करके बना लिए जाते हैं, यानी कईयों को मैंने देखा कहते ये मेरी मुंह बोली बहन है, यानी मुंह से बोल दिया तो बहन बन गई है। कोई लिखा पढ़ी, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज पत्र नहीं, नहीं जी जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह भी जो होते हैं ना, तो उसमें जो एंगेजमेंट सेरेमनी होती है उसमें बोल करके ही पिता ये वचन देता है कि मैं फला दिन को फला तिथि को फला समय पर फला स्थान पर अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड वाकदान। कन्यादान बाद में होता है, वो विवाह हो जाता है, पर वाकदान वचन देना होता है, ये सगाई को वाकदान कहा जाता है शास्त्रों में। मुंह से बोल करके रिश्ते बनते हैं और वो रिश्ते निभाए जाते हैं। अब देखिए कहानियां तो बहुत हैं, आधुनिक युग की भी और पौराणिक दौर की भी। कहते हैं कलाइयों पर धागा बांधते समय यह मंत्र पढ़ा जाता है। बलि का महायज्ञ, महाराजा बलि का नाम सुना होगा आपने, येन बद्धो बलि राजा। भाई राक्षस सम्राट था बलि, राक्षस कुल से था। वामन की 3 पग भूमि की याचना, शुक्राचार्य की चेतावनी पर बलि, बलि का हृदय है दानवीर का। अब ये राजा बलि जो है ये पूरे ब्रह्मांड पर साम्राज्य चाहते थे, पृथ्वी पर, पाताल पर, आकाश पर, हर जगह। तो उनके पास भगवान विष्णु एक छोटे से आदमी का, बोने का, गिट्ठी आदमी का रूप बना करके गए और जाकर के सुना है कि तुम्हारा बहुत नाम है दान पुण्य के क्षेत्र में, बड़े दानवीर हो तुम बलि, मुझे दान दोगे? बोले मांगिए महाराज मांगिए। कहते मांगे के बाद में पहले संकल्प कर लो, वचन भर लो। देखिए वचन की महिमा, वाणी की महिमा। कहते ना वचन से बेटा बेटी पराए होते हैं, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। वचन भरो तो बलि ने हाथ में जल चावल और पुष्प रख करके संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि मैं आप जो मांगेंगे आपको दूंगा। अब जैसे ही वो जल डाल रहे थे हाथ में तो उनके गुरु शुक्राचार्य पहचान गए कि ये जो बोना आदमी आया है ये भगवान विष्णु है और ये रुकावट डालना चाहते हैं मेरे शिष्य के पूरे ब्रह्मांड पर साम्राज्य हासिल करने के रास्ते में। पर बलि ने कहा नहीं, अगर ये भगवान भी हैं, बोने बनकर मेरे द्वार पर आए हैं मांगने के लिए, तो मैं जरूर दूंगा चाहे कुछ भी ये मांगे। ये न बद्धो बलि राजा एक बंधन में बंध गए वचन के और कहा कि आप मांगिए। तो जो बोना आदमी, जो गिट्ठू सा आदमी था, कहता मुझे 3 डंग भूमि चाहिए, 3 डंग 3 कदम मैं अपने कदमों से माप के 3 डंग भूमि लूंगा। बलि ने कहा 3 डंग में महाराज क्या करेंगे आप इतनी छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेकर के, आप कुछ भी मांगिए। बोले नहीं मुझे 3 डंग भूमि चाहिए। संकल्प किया, वचन दिया, मांगिए और फिर नापिए 3 डंग भूमि आपकी। तो भाई 2 ही डंग भूमि में सारी पृथ्वी को नाप लिया भगवान विष्णु ने, इतना विशाल रूप धारण किया, बड़े हो गए। जहां गिट्ठू बन करके, बौने बन करके आए थे, अब वो विशाल रूप धारण किया। बोले 2 ही कदम में सारी धरती नप गई है, सारा ब्रह्मांड आ गया इसमें, भाई अब ये बताओ 3रा कदम कहां रखूं? 3 डंग भूमि मांगी थी। बलि ने कहा प्रभु 3रा कदम मेरे सिर पर रखिए, मैं भी आपका, जमी भी आपकी, खजाना आपका, सर्वस्व आपका ही तो है। शुक्राचार्य देख रहे थे मेरे शिष्य को ठग लिया गया है, लेकिन शुक्राचार्य को भी बलि ने समझाया, भगवान विष्णु ने भी कहा कि अगर दान करने से तुम्हारे शिष्य का नाम युगो युगों तक प्रसिद्ध होता है तो यह काम ठगी का नहीं है, ये तो बहुत पुण्य का काम है। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर पैर रखकर उसे भी अपना बना लिया। तो भाई मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। बलि चाहता था ब्रह्मांड को, पर भेज दिया पाताल। भगवान विष्णु ने कहा अब तुम भी मेरे हो, अब तुम यहां नहीं रहोगे, पाताल में जाकर के निवास करो। शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मेरे शिष्य को आपने ठगा है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, जैसे बृहस्पति देवताओं के। अब आपको पाताल में मेरा शिष्य निवास करेगा, लेकिन आप उसके द्वारपाल बन के रहेंगे, पहरेदार दरवाजे पर। भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। अब देखिए साहब, मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। बलि चाहता था स्वर्ग को, पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार चाहता था, पर उसे भेज दिया पाताल। अब लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है, विष्णु नहीं लौटे, उनके पति नहीं लौटे, तो साहब फिर क्या था। लक्ष्मी जी पहुंच गई पाताल और पाताल पहुंच करके बलि से कहा भाई हाथ बढ़ाओ। बलि ने कहा क्या चाहती हूं? राखी बांधना चाहती हूं। राखी बांध ही बलि को भाई बना लिया और बलि से कहा कि अब राखी के बदले में भेंट दोगे? मांगो बहन, क्या मांगती हो? कहा मेरे पति को मुक्त कर दो। ये जो पहरेदार बना करके यहां बिठा लिए हैं, पूरे विश्व के संचालन का दायित्व इन पर है। अब कहा भाई एक श्राप ये भी था कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मीहीन हो जाओगे तुम्हारा। और सर पर पांव रखने का अर्थ क्या था कि अहंकार, अपना अपना सिर सौंपने का, कि प्रभु मेरे सिर पर अपना पांव रखो या हाथ रखो। अपना अहंकार, अपना घमंड, पूरे स्वर्ग का, धरती का, पाताल का राज्य अपने अधीन करने का जो गर्व हो रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का शासक हूं, वो गर्व, वो अहंकार उतार के भगवान को सौंप दिया। कथाएं हैं पौराणिक, लेकिन संकेत छुपे हैं, संदेश छुपे हैं। लक्ष्मी ने कहा मेरे पति को मुक्त कर दो, और भगवान विष्णु को उन्होंने मुक्त कर दिया। दानवीरों का सम्मान और वचन का प्रमाण, कितनी सारी बातें छुपी हैं इस पौराणिक कथा में। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, वचन में बंध जाते हैं, भाई बहन के रिश्ते इस तरह से निभाए जाते हैं, और भी दूसरे रिश्ते। ये नबद्धो बलि राजा, जैसे उस बंधन में बलि बंध गया, भाई को राखी बांध करके बहन। जो जन्म से होते वो तो भाई होते हैं, लेकिन जो मुंह बोले होते हैं वो रिश्ते कहते हैं, कभी कभी जन्म के रिश्तों से भी ज्यादा परिपक्व होते हैं। तो बहनें पहुंच जाएं भाइयों के घर, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और भाई के हाथ के पर कलाई पर राखी बांधते हुए कह दीजिएगा, तेन त्वाम प्रतिभग्नामी रक्षे माचल माचल, ये न बद्धो बलि राजा।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आपने सुना। और बहनों भाइयों, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उन सभी बहनों का जो राखी बांध रही भाई की कलाई पर, उन सब भाइयों का जिन्हें भाई चाहे पोस्ट में मिली चाहे बहन ने आकर के घर पे बांधी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं। संध्या, आपकी राखी मिल गई है बाहर से, भाई भारत से जो भेजी गई है, और दूसरे देशों से भी बहनों को जो है भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, प्रोटेक्शन का वचन मिल रहा है, और भाइयों को मिल रहा है बहनों का स्नेह। ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे एक भाई और बहन का जो संबंध है पावनता की धागों से गुथा हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आपको बता दें भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज जो रेट दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.4 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू, और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
6: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154 846।
7: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough, on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
2: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सेप्टेम्बर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन।
16: Have you noticed the way fans shout at football matches?
17: Oh, wake up!
16: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
18: London, are you ready? Raga Event presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
19: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
18: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks to Hitan Mehta OBE, Chief Executive of British Asian Trust.
20: British Asian Trust, what does the organisation do?
21: The British Asian Trust was started by His Majesty the King when he was Prince of Wales, Prince Charles, to support disadvantaged people right across South Asia. And so far, we've been able to help 18.8.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
22: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. It's summer on the Leica Radio Network.

0: राखी बंधन।
1: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में
0: बंधन है ऐसा।
1: ये गीत आपने सुना। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं भाई सभी श्रोताओं के लिए, लाइका रेडियो नेटवर्क के लिए।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: नैने लड़ जाई है तो मन वामा कसक होई बेकरी। भाई बात ये जो अंदाज और जैसी आवाज और जैसी धुन बनाई ना, पता लग जाता है कि ये तो भाई संगीतकार नौशाद की रचना हो सकती है। भाई नौशाद साहब का भी मैंने रेडियो पे इंटरव्यू किया था और कितनी बढ़िया जानकारी उन्होंने अपने भारतीय संगीत के विषय में दी थी और कितना गर्व था उनको भारतीय संगीत पर। कहते हम बाहर पता नहीं क्यों ढूंढते जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। भाई आई विश कि आई कुड हैव कैप्ट ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स जो बड़े बड़े संगीतकारों के। मैंने रविशंकर साहब को इंटरव्यू किया, लता जी को किया, नौशाद साहब को किया, ऐसी ऐसी हस्तियों के इंटरव्यू मैंने संभाल कर नहीं रखे। कुछ रखे हैं तो वो अभी ढूंढने हैं, ढूंढने पे लगे रहते हैं।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: आपको बता दें भाई, हमारा नया एपिसोड जो है वो आ चुका है और अब उपलब्ध है। पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 30, टाइटल है उसका द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस, होस्टेड बाय दीप राजा। दीप राजा स्पीक्स टू हितेन मेहता ओबीई, ये हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो भाई जरूर देखिएगा, काफी जानकारी आपको मिलेगी, ज्ञानवर्धन होगा। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइक अ एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: We hit
0: Leica Radio.
4: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
5: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM. Show start. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786028065. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity. Wait, be part of Dubai's growth story. Call the 3963-5757 to arrange your meeting.
8: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family Disneyland Paris. So set with Cake Box and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNC's apply.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
10: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 6th, the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
9: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
11: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
13: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
14: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
15: Pepe's Piri Piri is firing more at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
16: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Lester, Navratri ni dhamakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
18: She's back.
19: साथ देने का दिलाया और फिर छोड़ दिया मुझको अकेले.
20: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane.
19: Will be very much Nasir.
21: Catch Anisa Nasir as your big show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Leica Gold and Leica Radio, Greater Manchester.
2: हजारों यार होते हैं जब जर पास होता है. जर यानी पैसा, दौलत. हजारों यार होते हैं कि जब जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है. ऐसा क्यों होता है?

बिन तेरे अपना यकीन मैं किसी को आज तक, बिन तेरे अपना सके ना हम किसी को आज तक, मैं तेरी बेगानगी का जिक्र अब किससे करूं। मेरी दुनिया के लिए आदर्श थी तेरी फजानगी, अपनी इस दीवानगी का जिक्र किससे करूं। जब बहारें थी तो मैं लिपटी रही एक खार से, ऐ चमन वीरानगी का जिक्र अब किससे करूं। चश्मे हैरान हो रही है दिल की हैरत अश्क से, मैं बगैर हैरानगी का जिक्र अब किससे करूं, किससे करूं।

0: गारंटीड तुमको ना हम भूल पाएंगे। मुकेश जी की आज पुण्यतिथि है और मुझे याद है 1990 में मैंने नितिन मुकेश जी को इंटरव्यू किया था तो कहने लगे थे रवि भाई 14 वर्ष हो गए हैं आज पापा को हमसे बिछड़े। यूं समझो 14 वर्ष का वनवास काटा है हमने, एक एक पल उन्हें याद किया है। स्वर्गीय मुकेश जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हैं उस महान कलाकार को।
1: अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: और लीजिए साहब लेमफाई के रेट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो सही अवसर है, सही रेट अच्छे चल रहे हैं तो नोट कीजिए आज कितने पैसे मिल रहे हैं एक पाउंड के बदले। वन पाउंड कुड गेट यू इन इंडियन करेंसी अप टू 129.71 रुपीज, पाकिस्तानी 377.07, श्रीलंकन 446.31, बांग्लादेशी टका 166.92 एंड अफगानी 88.9।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 108.48 pounds per gram.
1: Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Panel na function lakha hua hai.

एक जमाना था भाई जब हवाई यात्रा के बारे में तो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमें दुनिया की सैर करने की इच्छा होती तो किसी फिल्म के माध्यम से सिनेमा हॉल में बैठ करके दुनिया की सैर कर लेते थे। खर्चा कोई ज्यादा नहीं, उन दिनों बस 90 पैसे में टिकट आ जाती थी दुनिया की सैर करने के लिए।

0: It
1: is. Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: कुछ गीत ऐसे होते हैं कि बस सुनते ही आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये गीत तो जरूर ओपी नैयर साहब की बनाई धुन पर सवार है भाई। वो रिदम कुछ ऐसी इस्तेमाल करते हैं और उसमें दुगन और विलम पद जो ताल हैं वो भी बता देती हैं। खैर साहब, ओपी नैयर साहब के संगीत पर मेरे सनम फिल्म का गीत आपने रफी साहब की आवाज में सुना। और भाई, इस तरह के और भी गीत आ रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको याद दिला रहे हैं कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई हर बहन को भाई के पास आने का इंतजार है कि भाई आएगा राखी बंधवाने, या मैं खुद जाऊंगी भाई के पास राखी बांधने, या मैं पोस्ट कर चुकी हूं और भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवा कर जरूर फोटो भेजेगा। क्या बात है, देखते हैं साहब। वैसे आपको बता दूं कि जब भाई नहीं पहुंच पाता है, पहुंचने की बात दूर, अगर उसका फोन भी नहीं आता है और पिछले काफी दिनों से उसका कोई खत भी नहीं आया हो, तो फिर बहन का दिल डूब डूब जाता है। कैसे, कुछ इस तरह से।
2: ये है
1: Like Her Radio.
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

ना होली पे आया ना दिवाली पे आया, ना कोई खत लिखा ना कभी फोन मिलाया। क्या हो गया, कहाँ खो गया? आज बहुत याद आई,

कहां इतना बिजी हो गया भाई, राखी के त्योहार पर बहन की याद नहीं आई। बड़ा इमोशनल गीत है बहन भाइयों, भाई सुन रहे हैं तो पहुंच जाएं बहन के घर राखी बंधवाने के लिए।

0: मेरी माँ के जाए रे, तू आता जाता कोने। हरियाणवी संवाद है लेकिन हर दिल इस भाषा को समझता है, और खासकर बहन का दिल। मेरी माँ के जाए रे, तू आता जाता कोने। आजकल कहाँ खो गया है तू, किसका हो गया है तू। मैं बहन सहोदरी, तुम्हारी बहन तुम्हें याद करती है रक्षाबंधन के त्योहार पर। आजा रक्षा लेकर के, तेरी प्रतीक्षा में आंखें बिछाई बैठी हूँ, तेरी राहों में भाई चला आ।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel की ओर से भाई एक संदेश आपके नाम, दुबई के लिए इनवाइट। Southall Travel is known for its competitive holiday deals for Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday break brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like a radio.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: महेंद्र कपूर, जयश्री और खुद संगीतकार रवि गा रहे थे इस गीत को। अभी जो आवाज आपने सुनी ये रवि साहब की अपनी आवाज थी। भाई रवि एक सिंगर भी थे और संगीतकार तो थे ही, पर बड़े गुणवान व्यक्तित्व के स्वामी थे। जब भी उनका कोई गीत बजाता हूँ मैं बड़ी श्रद्धा से उन्हें नमन करता हूँ।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोको बोल टुडे।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Well, LemFi ke rates note kijiye bhai, 1 pound ke badle at this time they are giving in Indian currency 129.66 rupees. Pakistani 376.61, Sri Lankan 445.98, Bangladeshi taki 167.34 aur Afghani 88.87.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold. Well, the gold is sold at the rate of 108.48 pounds.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: और बहनों भाइयों, कुछ संदेशों के बाद एक और राखी का गीत आपको याद दिला दूं कि 1 बजे की खबरों के बाद बाली भाई का कार्यक्रम शुरू होगा। मुझे पूरा यकीन है जब वो पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं और आप पूछेंगे भाई कौन सी रुकावटें हैं। दरअसल क्या है कि लड़कियां रोक रोक करके उन्हें राखी बांध रही हैं रास्ते में। बड़े प्यारे भाई हैं भाई, तो वो जो है पहुंचेंगे तो फिर आपको फिल्मी दुनिया की सैर कराएंगे। फिलहाल कुछ एक संदेश और उसके बाद राखी का एक और गीत।
5: ये है लाइका रेडियो।
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
8: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 0208574-8410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11,
13: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. 11, 11.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. Make every day grand.
3: Like a Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
16: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
17: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: Punjab, the biggest tunes.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और बहन भाइयों, धीरे धीरे हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि ये क्या है राखी का त्योहार, रक्षाबंधन. कुछ एक श्रोताओं के लिए शायद शब्द नया हो, लेकिन हिंदुस्तान से जिनका संबंध होगा इस तीज त्योहार से बहुत क्लोजली रिलेशन हमेशा रहा है. क्या है ये रंगीन की डोरियों का त्योहार है राखी, भाई बहन के प्यार का इजहार है राखी, बहनों को दिलाए गए वादों का यकीन है और भाइयों की तरफ से ये इकरार है राखी. बांधी है कलाई पे दुआओं में पिरोकर बहनों की, सब दुआओं का श्रृंगार है राखी. भैया इसे बाहों से जुदा मत करना कभी, भैया अपनी कलाई से इसे जुदा न करना कभी. श्रद्धा है, पूजा है, ये सत्कार है राखी.
2: समझो ना

सभी भाइयों को बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बहनों भाइयों, जाते जाते अब उस कलाकार को याद करें जो अमेरिका में गए थे शो करने पर लौटे नहीं। अमेरिका में डिट्रॉयट में भाई जिन्होंने आखिरी सांस ली, लता जी के साथ उनके शो वहां चल रहे थे, और वो शो जिसमें भाई उनको शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग जब महसूस हुई, सीने में दर्द का एहसास हुआ और पता लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है, हॉस्पिटल ले गए लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा न सके। स्वर्गीय मुकेश जी को हम याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है आज। आपको लगता है कि मुकेश चले गए? नहीं साहब, ये हैं, यहां मौजूद हैं। स्वर में ईश्वर है और ईश्वर में उनकी अंतरात्मा आज भी विराजमान है। वो यही है हम सबके आसपास।

स्वर कभी नहीं मरता, द साउंड इज इमोर्टल एंड दैट्स व्हाई वी फील दैट मुकेश जी इज विद अस। उन्हें श्रद्धा से नमन करते हुए रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। हैव अ सुपर्ब डे। बाय बाय।

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।

0: क्या गाने, क्या गाने, दोनों गाने शैलेंद्र जी ने लिखे और यस शंकर जयकिशन का संगीत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुकेश जी की और हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी की। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने जो फिल्में डायरेक्ट की थी उसमें जहाँ भी मुकेश जी ने गाया वो गाने मैंने आपको सुनाए, जैसे कि अनाड़ी फिल्म दैट वाज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, आशिक फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, एंड इन द प्रीवियस आवर आई प्लेड तुम जो हमारे मीत न होते आशिक फिल्म का, एंड फिर भी फिर कब मिलोगी उसका गाना जो था कहीं करती होगी। सो ये चार गाने आपने जो सुने जो मुकेश जी ने गाए फॉर ऋषिकेश मुखर्जी, गिविंग अ ट्रिब्यूट टू ऋषिकेश मुखर्जी एंड मुकेश जी एज अ कॉम्बो, यानी कि कॉम्बिनेशन। अब मैं इनकी कहानियां बोलना शुरू कर दूं तो दो गाने कम हो जाएंगे, जैसे कि मुकेश चंद माथुर बोर्न ऑन 22 जुलाई 1923 इन दिल्ली एंड ही पास्ड अवे ऑन 27 अगस्त 1976 इन डिट्रॉइट, 1300 सॉन्ग्स इन 36 इयर्स, ही डाइड एट द एज ऑफ 53 एंड ही वाज एक्टिव फॉर 36 इयर्स फ्रॉम 1940 टू 1976। ये सब बातें तो सबको मालूम है, सो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ एंड मुकेश जी को याद करते हुए हम गाने जारी रखते हैं। मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव डीएबी एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com एंड अ बिग हेलो टू एवरीबॉडी इन द मिडलैंड्स। 415th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, जिसपे राज पत्तन जी आएंगे एट 4 PM एंड सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम From 4 to 7। आगे बढ़ते हैं, गाने सुनने आपको है तो यू विल बी सो सो सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू हियर द सॉन्ग्स दैट आई हैव प्लेस्ड इन टुडेज प्लेलिस्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 129.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: जेमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्म भट्ट। बाली ब्रह्म भट्ट जेमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Lester and Little Garba Stars, taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 Varashna Kids Mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
7: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
8: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: आई हैव फेल से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
11: Back and it's bigger.
12: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
11: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
12: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
11: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
14: You know how fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: प्लस अब है स्टॉप प्लस।
1: She's back. साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर।
2: Catch Anisa Nasir as she returns on the Big Show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Leica Gold and Leica Radio, Greater Manchester. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Everybody's favorite. मेरा कंप्यूटर भर गया. थैंक यू इंतशाब जी. इंतशाब जी, आपका मैसेज मिलते ही मुझे पता चल गया यू मस्ट बी एंजॉयिंग विजय गोडोरी, महेंद्र पटेल एंड राजीव पटेल, निशा, जगदीश, रानी जी ऑफ स्लाव, रमा पटेल, ओह यस, अनिल भट्ट जी, क्या बात है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं. पैमी जी, यस, संध्या भावसर टू, ज्योति गिरीश शाह, कीर्ति, वाह, प्रकाश सोमया.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester एंड Leica Radio Midlands पर.
1: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: And looking at the Southall Travel offers, that's the best one you can ever have. Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday

0: What a song. इसे मेरा दोस्त जो है, मेरे और बॉब का दोस्त फकीर, काइजर फकीर याद आ गया मुझे.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: Wow, wow, wow. I know you're enjoying Kalyanji Anand ji ka sangeet aur Majroo Sultanpuri ki lyrics. Aur aaj ek tribute ho raha hai. That is on Mukesh ji. I started off with Rishikesh Mukherjee and all the songs that Mukesh ji had sung for Rishikesh Mukherjee. And maybe one or two missed out, but most of the films that Rishikesh Mukherjee had directed, like Anari, Fir Anand film, Ashik, and then Satyakam, Sanj aur Savera, and Phir Kab Milogi, aisi aisi filmein jo Mukesh ji ne unke liye gaya tha unme. Aur uske baad hum Mukesh ji ke gaane aapko suna rahe hain. Jitna kam bolunga, utne zyada gaana honga. So aap mere ko bolenge hat, main hat jata hun, no problem. पर इतना ही बताना चाहता हूं कि दिस इज लाइका गोल्ड एंड माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन एंड ऑफ कोर्स कल तो कंपटीशन अच्छा सा होगा फ्रॉम जैमिन द विनर विल गेट अ हैम्पर फॉर रक्षाबंधन यस मेरी कलाई अभी खाली है लेकिन कल सुबह वो कलाई पे एक दो तीन चार राखियां आ जाएगी एंड आई एम वेटिंग ईगरली फॉर दोज राखीज रक्षाबंधन राखी का त्योहार बड़ा शुभ दिन होगा आगे हम एक कंपटीशन करने वाले हैं और कंपटीशन में तैयार रहिएगा अगर दो टिकट जीतने हैं आपको यस रवि शर्मा जी ने तो चार चांद लगा ही दिए थे कल इस कंपटीशन में आज मेरी बारी है तो सुनते रहिएगा लाइका गोल्ड गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव ऑन डीएबी एलेक्सा गूगल होम एंड laikagold.com एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड बर्मिंगहम वालो कमिंग सून
1: दिस इज लाइका गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन
0: यस एंड आई एम रेडी for competition and so are you. Laika Radio Network teams up with Ebrox Events for Fahad Yaf. Yes, Fahad is back. Fahad Yaf paying tribute to Muhammad Rafi and Kishore Kumar accompanied by Manisha Sharma on Sunday, 6th of September from 5 p.m. at Harrow Arts Centre, Hatch End, Pena. And send in the word Fahad, F-A-H-A-D, Fahad, for you to be in to win two tickets to this memorable show. Don't forget, you can also purchase tickets from Harrow Arts Center's website. Yes, hame aapka naam chahiye, aapka telephone number chahiye, aapka email ID chahiye, and aur kya chahiye, main zara pata lagata hoon. क्योंकि फहद की कंपटीशन में हमने आपसे टेलीफोन नंबर मांगा नाम मांगा और ईमेल आईडी मांगा एंड द वर्ड फहद याद आ गया ओके आई विल रिपीट इट वंस मोर नाम लिखिएगा फहद एंड देन योर नेम योर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी एट द एंड ऑफ दिस आवर वी विल नो हु विंस टू टिकट्स for Harrow Arts Center. Yes, that is on Sunday, 6th of September from 5 p.m. Good luck.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 pieces से शुरू. और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
12: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. What's your travel mantra?
13: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
16: high appreciation
17: in Dubai.
18: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

Here we go. I've got good news for you. Sandy Shah is going to do 3 hours of Mukesh G on Drive Time. Did you hear that? Yes. Sandy Shah on Drive Time, 3 hours of full 2 Mukesh Ji ke gaane. Sunte rahiyega aage jaate hue. Ji haan, Mukesh Ji mehfil chhod ke chale gaye the 50 saal pehle. Ye gaane se hum alvida karte hain. Next gaana रफी साहब और मुकेश जी ने जो साथ में गाया था फिल्म दो जासूस का. सैंडी शाह इज गोना डू 3 hours ऑफ मुकेश जी एज अ ट्रिब्यूट. राजपत्तन जी ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार. होप यू एंजॉयड द शो टुडे.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
2: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Ye hai Laika Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत

0: अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just $8.96. 10 kilograms, only $16.96. And the big 20 kilograms pack, just $29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or her special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected. In 5 days, Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
1: Okay, so podcast episode number 31, and it is hosted by our very own Raj Badden and Kush. And they are talking to the lovely people behind the story, which is the Diwali story. Now, they are exploring why Ramayana still matters today. And the founder of Sanatan Events has shared why he is choosing to present this story in English. So 300 people auditioned for this, and after a sold out show at the Royal Albert Hall, the Diwali story is coming to the Ova Arena, Wembley, on Sunday the 27th of September. So make sure you are watching it.
0: Leica Extra is here. Leica Radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे Grand.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
10: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances.

0: Okay, so remember, we are asking the question, who composed the music for the film that is Pardes? Who composed the music for the film that is Pardes? So get your answers in. This beautiful one, Bela Nisha from Jorjita Wasikandar. Love this track.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Okay, gold today is trading at £108.99 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा? We'll be right back.

0: है
1: लाइका रेडियो।
0: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्ट।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र।
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. Even for quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
9: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Raj Patton.
10: Hey up, it's me, Raj Patton. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7pm with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and of course the Punjabi hits. That's me, Raj Patton on Drive.
9: Leica Radio. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.